रंग न सोए, ऐश कुम चढ़ाई सर पातल होए, नानक भगते जे रपै कूड़ै सोई न कोई महला पहला। लाभ पाप दे राजा मैता, लाभ पाप दे राजा मैता, कुर हो आशिक दा, काम ने सत पुछिए।

मैं वेद अथर्मण हुआ नाव कुदय गया नील वस्त्र कपड़े पहरे तुरक उठाने मिल किया चारे वेद होश्या पढ़े गुण तिर चार उचार पाओ भगत करने सताए तौ नानक मुखंतर पाए पौ सागर बिटो वारिया जत में लिख समालिया।

बनाईसी हुकुम बनी हुए प्रमाणता कस में का मेल पाए से कस में पावे सो करे मन उच दिया सो फल पाए से तह दरगह पैदा जैसे।

सुन यार हमारे सजन, एक करो बिनती, तिस मोहन लाल प्यारे फिरो खोजंती, दस प्यारे सिर तरी उतारे

तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोए न जाने ऊचे ते सगल समग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत में तम

आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दीदात बख्शो, हुक्मानुसार जीवन ज्यों दी समर्था बख्शो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करन

कारण करता जो करै सिर धर मन करै शुकराना। जे सुख दे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे त्या। जे उन्हों सुख वेले याद करदे आ ते दुख वेले भी उदा शुकराना करना है। सतगुरु जी ये भी तेरी दात है। जो सतगुर करदे ने उन्हों सिर प्रवान करके सिर मत्थे प्रवान करना कि जो सतगुर दी दात है वो मेरे लिए वधिया। कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना।

जाइए तेरा अंत ना परव्रया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहें तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दयाब संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चो जबडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी तिन टूटी जमकी फांसी जैना निरपाओ जिन हर निरपाओ ते आया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तपहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बह सिमर शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरे सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आ मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ मिन दूजा कोई नाहे
जीजन सब तेरा खेल, वियोग मिल बिछोड़या संयोगी मेल। जिसना तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण है। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरब रड़ै पाई रे निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंकजो माह पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबियले। मान एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसर तेरे गुण गलया रहो। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणव तनानक तिन की शरना, जैना तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भाई प्रापत मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काय तेरे किते न काम। मेला साध संगत भाज केवल नाम, श्रंजाम लाग पवजल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा। शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा। शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हद रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण नमन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवै तुम काबो हो। आभा दे मोहे बचाबो हो, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सवै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सबे रिनको आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ। जो वर चहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिखा मार तारी है। चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए। मरण काल का त्रास निवरिए, हो जाओ सदा हमारे पच्छा। श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मुहे रखण हारे। साहेब सन सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा।
काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सवलोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंद जक्षण उपजायो, आद्यंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पढ़ पढ़ की जाने, जाव उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरतता देह अपारा, जब आकर्ख कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम साही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ, ताका मूढ़ उचारत पिदा, जाको पेवना पावत बिदा, ताको कृपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव को कह सदा शिव, रंकार का चीनत नह विव, आप अपनी बुध है जेती, बरनद भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, इक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जे रसे तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमड भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंप, आजुगा स्वरूप स्वयंप, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बारे सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस्तो जे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहावाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न है, रच्छा हुए दाही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ, ताकि ताप तनक मैं हरिहो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल भांसते तहें ओबारा, ज
जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद्र दुष्ट दुख तेरहा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, सवैयाओ पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरह नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद स्वभाव, बहुवेद कहें हम एक ना जान्यो।

राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता बाया सहज सेती मन वजियां बाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जैनों भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन वसिया, जैनों इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनहो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंशव तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दो तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागी, कह नानक तस कहो तित कर अन्नहद भाजी, आनंद सुनहाओ वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसुरे, दुख रोग संताप उतरे,

जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा।

सजे वे दीवाना अंदर शब्द कीर्तन शब्द चौंकी सोदार रहरास साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दियां सेवा संभाल करदियां हजूरी अंदर विचरदियां एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुलां गलतियां हो जांदियां ने अखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी अगां तों समत बख्शनी दार आई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी दिल फुल पेटावां दर मंजूर करनियां यात्रावां सफल करनियां जी सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो जीव शके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी आप जी करो कृपा अमृतमई बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन ज्यौण दी समर्था सूझ बख्शनी सही

अपने दुख दर्द का अंता रहाओ, जाके घर सब किच है भाई, नौनिद भरे पंडार, तिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊचा अगम अपार, जी जंत प्रतपाल दपाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा पिटिए पाही, शबद मिलावन हार, सच्चे चरण सुर भी है बाही, भ्रम पहोवे नास, मिल संत सबा मन मजिए भाई, हर के नाम निवास, मिटे अंधेरा ज्ञान तबाई, कमल होवे परगास, गुरबचनी सुख उपजे पाई, सब फल सतगुर पास, मेरा तेरा छुड़िए भाई, हुई है सब की तूर, कट कट ब्रह्म पसारे भाई, भिख सुने हजूर, जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर, करन करावन समरथो भाई, सर्व कला परूर, प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश, तिस भावे तमेल ले भाई, हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल प्रगसिए पाई, हृदय होवे परगास, प्रगट भया परताप प्रभ भाई, मोलिया धरत आकाश, गुरपूरे संतोखिया भाई, आयन से लगा पाओ, रसना राम रवे सदा भाई, सच्चा साध सोआओ, करणी सुन सुन जीवे आबाई, निचल पाया थाओ, जिस पर तीत न आवी भाई, सोजी अड़ा जल जाओ, बहु गुण मेरे साहेबे पाई, हो तिसके मल जाऊं, ओ निर्गुण आरे पार दबाई, देन थावे थाऊं, रिजक सबाहे साथ साथ भाई, गुड़ा जक्का नाऊं, जिस गुर सच्चा बेटिए भाई, पूरा तिस करमाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवे भाई, सर्व कला भरभूर, सास ग्रास न विसरे भाई, कौन सदा हजूरा,
साधु संग मिलाया बाई, सर्व रहा बरभूरा, जिना प्रीत न लगिया भाई, सनित नित मर्दे चूरा, अंचन लाए तराया पाई, भौजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहलिया भाई, की तोन अंग अपा, मन तन शीतल होया भाई, भोजन नाम आदा, नानक तिस शरणागति पाई, जे किल बिख कटन हार, मन तन शीतल होया पाई, भोजन नाम आदा, नानक तिस शरणागति पाई, जे किल बिख कटन हार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

इतनी को सेवा प्रवान करनी कीर्तन करदियां होईयां अनेका प्रकार दियां पुल्लां बख्श लैणियां धन्नवाद तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिन्हां ने आप तरस करके सिर ते हाथ रख के कीर्तन दी सेवा लई है आप सब संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने बड़े एकागर चित नाल कीर्तन सरवण कीता है होइयां पुल्लां दी खिमा बख्शना आओ गज बज के फतरे बुलाइए जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की

सच भाई, बहुत बहुत शुक्राना गुरु की संगत का जिहड़े हुण तक बह के सरवण कर रहे ने। बड़ी खुशी हुई जदों नौजवान वीर सारे साडे वर्गे जदों बार पौड़ियां तो सी आ रहे सी ना वीर मिले, असी चले हाँ तो कहिंदे सी चले हाँ कि सानू पता नहीं सी अज तुहाडा दीवान है वी असी तुहाडे करके फिर दोबारा गुरु घर च हाजरी भरन चले हाँ। ये मन च बड़ा चा है, मन च खुशी हुई है कि नौजवान वीर कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन नूं प्यार करते हैं, कीर्तन नूं भावना बना के अंदर वसाए। सच्चे पातशाह रहमत करन सारे नौजवान वीरां ते, ये कृपा ये पराला ये बनिया रहे, ये चा ये प्यार ये कीर्तन प्रति श्रद्धा ये बनी रहे। सच्चे पातशाह रहमत करन सारियां संगतां दियां हाजरियां धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह अपने दर ते प्रवान करन। आप संगतां ने नाल गाया है, नाल रसना तो पवित्र शब्द पढ़े ने। सतगुरु पातशाह रहमत करन दर आईयां संगतां दियां हाजरियां गाव्या सुनिया, धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी अपने दर ते प्रवान करन। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह आप संगतां नूं चढ़दियां कला इसे तरह उद्यमां च उपरालियां च आउण दी ताकत बल बुद्धि समर्था बख्शिश करन। बहुत धन्नवाद है गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब उन्हां दा, जिन्हें भी मैंबर साहबान जिन्हां ने उपराला कीता, आप संगतां ने दर्शन दीदार होए ने। प्रधान साहब उन्हां दा विशेष तौर पर धन्नवाद जिन्हां ने हुक्म लाया, आप संगतां दीदार होए ने। सतगुरु

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, उचे ते उचा भगवंत। सगल समगरी

नानक दास ए है सुख मांगे मोको कार संतन की तू रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई सादिक सिद्ध सक

आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन।

राम रमन दुरत दमन सकल पवन कुशल करन सर्व भूत आप ही देवांद देव सहस मुख पुनिंद जियो जरम।